अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन में राख मन की तू प्रीत आग तिस्ते परे नाई किच कोय सन्नंतर को सोए अपे भी नय अपे दान गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल भक्सन सा तेरे की चरणी पाओ नानक के मने अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र पोर तिसका मंत्र न जाने हो रे अंधर मंगल सज्जा कै सर्वतोक सुनिए करता कै राज मैं राज योग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याय त्याय भक्त सुख पाया नानक तिस पुरखा के अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने भूत सगल परोई अपने सोत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जन दास नाम ते आवैसे ते गुण मैं जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए उचनीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख रह के रंग नाना बिदकिनो विस्तार प्राव्य विनाशी एक अंकार नाना चलत करे खनमाए पूर्यो पूर्ण सब जाए नाना बिद कर बंत बनाए अपनी कीमते आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके टाओ जाप जाप जीव नानक हर नाव नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे प्रिय सपवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थानक पुरख सत केवल प्रदान करतूत सत सत जाकी वाणी सत पुरख समाए समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नानक गुरते पाई सत वचन साधु उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश सरत निरत बूझे जे कोय नाम जपत्ता की गत हुए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी श्रेय सो करने हारे अवरण बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जो दिस भावे सो वरती आ बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बूझिया तिसे आया स्वाद प्रभ के रंग राज जम जाए गुर के वचन पदार्थ लहे ओए दाते दो काटन हार जाका संग त्रय संसार जन का सेवक सो वड भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आदि सच जुगाद सच है वे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत आवन हार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जत संता भोजन हर को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत रूप स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावंत मूल पहचान्या जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पैते निरपा होए बसाना जिस से उपजे तिस माए समाना बस माए ले बस्त गडाई ताको पहना कहना जाए बूझे भोजन हर विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर का सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राख निरंकार सो सेवक जिस दे प्रभ धारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे अपने जन का परदा ढाक अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख ताकि गतमित को न लाख प्रभ के सेवक को न पहुँचाए प्रभ के सेवक की उच्चे उच्चे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दस दिस प्रगटाया नीकी कीरी मैं कल राख भसम कर लश्कर कोट लाख है जिसका साजना काटते आप ता को राख दे कर तुम मन जतन करत बात जिसके करतब बिरते जात मारे न राखे अवर न कोय सर्व जिया का राखा सोए काय सोच कर रे प्राणी जप नानक प्रभ लक विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिय पिय अमृत मन तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके छेवर नाही दिशाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुकर नाम का संग नाम रस जो जन तिपताने मन तन नाम नाम समान उठत बैठत सुवत नाम कहो नानक जन के सदकाम बोलाहो जस जे वा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करह भक्त आत्म कह जाए प्रभ अपने स्यों रह समाये जो हुआ हुवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी मामा कौन वखानाऊ तिसका गुण का एक न जानाऊ आठ पैर प्रभ से हजूरे कौन नानक सही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर सियान सगली चाड़ते जन की तू सेवा लाग
ਹਵਨ ਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਸਲੋਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ।

विचार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हरि अपेक या विस्तार जात पावे तृष्टि उपाय अपने पाने ले समय तुम ते भिन्न ही किछ होए आपन सो सब जगत पर होए जाको प्रभ जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नानक सकल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबदा के आदीन दयाल नाथ को नाग जिस राख तिस को न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तर कहाँ को जाए सब श्री एक निरंजन राय जी की जुक्त जाके सब हाथ अंतर बार जानो सात गुण निदान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब परोवत कृपाले अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्या प्रतिपाल जियन बपात जो जो रचो सति सति हार जिस पावे तिस लय मिलाए भक्त करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करण हर नानक एक जानिया जान लागा रे कहनाए तिसकी आसना वृति जाए सेवक को सेवा बने आई हुकम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसे निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंतिन पूजे गुर के पैरे लोक सुखी पर लोक सुहेले नानकर प्रभ अपे मेले साथ संग मिल करो नंद गुण गाव प्र परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देख करो दारे अमृत बचन हर के गुण गाव प्राण तरण कह स्वाव आठ पैर प्रभ को नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय सब मन इच्छे नानक फल पावो हलत पल तो ले उसवार राम नाम अंतर उरदार पूरे गुर की पूरी दीख्या जिस मन बसे ते साज परीख्या मंत्र नाम जपो लिबलाए दुख दर्द मन ते पहुँचाए सच व्यापार करो व्यापारी दरग निभ के तुम्हारी एक टेक रखो मन माए नानक भावना आवे जाए तिस्ते दूर कहाँ को जाए उभरे रखन हार त्याय निरपो जप सकल पौ मिट प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभ रखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवे सुख चिंता जाय मिटे अहंकार ते जन को कोई न पहुंचन हार सिरे ऊपर ठाडा गुरु सूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेकत उदर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रभान अंतर जामे परक प्रदान जिस मन

अष्टपदी शांत संघ अंतर प्रभु ठाना प्रभु कला का मीठा सकल समग्री एक सकट माए अनक रंग नाना दिशाए नौ नित अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाधि अनहत्या नाद कह न जाए चर्च बिस्मा तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत घट घट व्याप्रिया भगवंत तरण माए आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतिपाल मंथन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम पावन पाणी बसंतर माए चार कुण दे दिस समाए तिस दे भिन्न नहीं को ठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देख ससी अरसूर नखेत्र मैं एक बाणी प्रभु की सबको बोले आव डोल न कब हूँ ढोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइये गुणे अमोल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत धार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुनाए शुभ बचन सर्व व्यापी रंग संग रचन जिन जाता तिसकी रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हो सोई सुख माना कर्ण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत पत तिस भावैता करे विस्तार तिस भावैता एक ओंकार अनक कला लखी न जाय जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर।

बखानी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मेटै संत कृपाते जमते छोटै जाकै मस्तक करम प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस

वंत सगल समग्री तुम रह सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठी सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है घर नौने दया वै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तर के बोलो जी। पंजां प्यारे

जिसे अंतर ब्रह्म विचार। वाहो वाहो सतगुरु निरंकार है जिसे अंतर पारा बार। बाहो बाहो सतगुरु है जिस दृढ़ है सोई। नानक सतगुरु बाहो बाहो जिसते नाम प्राप्त होए।

0: अंधन चिंता चिंत चिंता बद्धा हो जाए जमना
1: मरन ना चुकई हमें कर्म कमाए

एक ओंकार सतगुर प्रसाद रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग अलप है आठो नंदन प्रथम राग पैरो वैकर ही पंच रागनी संग उचर ही प्रथम पैरवी बिलावली पुनिया की गा वह बंगली पुण्य सलेखी की पई बारी पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनावै बंगाल मध माधव गावै ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावै गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलापह संग रागनी पंचों थापै है गोंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सिंहती उचारी धनासरी पंचो गाई माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उबारा खौ खटो पौरानंद गाय अष्टमाल कौशक संगलाय पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत उठै तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस हीरी लै पार जा संगलाई पंचों आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सोहाए सरस बान ओ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कुमुदा अष्टपुत्र में कही सवारी पुन्याई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप का मुदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औरामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा ओ कानरा कल्याण अष्टपुत्र दीपक के जान सामिल श्री राघवै गावै पंचो संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै है आसावरी ते पातशाह सिंधवी अलापी श्री राग स्यो पंचो थापी सालू सारग सागरा और गुंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खस्तम एक राग वह गावै है पंचो संग बरंगन लावै है सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुनगुनी उच्चै सुर सूहो पुन कीनी मेघ राग स्यो पंचो चीनी बैरा तर गज तर के दारा जबली तर नट ओ जल तारा पुन गावै है शंकर ओ श्यामा मेघ राग

के अठारह दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रामकली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जगदाता सोए भगत वशल तिहलोए जियो। गुर शब्द समावे अवर न जाने कोई जियो। अवरु न जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे। आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत तिते हर पाया। हर भाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रपास जियो। सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हो हर जन केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चलदियां होए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुर

जैसी जल ते बुदबुदा उपजै बिन सैनीत जग रचना तैसे रची कहु नानक सुनमीत। जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। सो कहो टल गुर सेवी एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए जन्म मरण दुख जाए सिफत खसानी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सचे पात साहो मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पात सा।

सगल समग्री तुमरे सूत्र तार तुमते हो, तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आय घर नौने दया वै ताए। सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी।

मिलै सदा सुख होए रहाउ। नित नित जीअड़े संभालियन, देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवन सुमार। संबत साह लिखिया, मिल कर पाव तेल। देहो सजन सीसड़िया, जो होवै।

अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंदे साहो जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा वे साहो।

राग गोजरी महल्ला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाए, कर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाए, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम परगास। राग गोजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवह उद्दम। जा आ हर हर जीओ परया, सैल पत्थर मह जंतु पाए। ताका रिजक आज्ञा कर धरिया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर, काही मन भव करिया। ऊडे ऊड़ आवे सै कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै,

तुमरा लखा न जाय पुसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बाहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हुआ बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछित फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई, अड़िल सुने गुंग जो याहे सुरस न पावै, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता पावई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहै,

गुरमुख बिरले जाने। ये पंक्ति जिस विच सारे शब्द का केंद्री भाव है, भगत जी दसदे हन कि जो मनुख अपने हवाले करके

0: मुखदंत रसन सगल कस जावत। रे मन मूड सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत। तिसे त्याग आन को जाचे, मुख दंत रसन सगल कस जावत। रे मन मूड सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत।
1: माया रंग बिरंग करत ब्रह्म, मोके कूप गुबार परयो है। एता गब आकाश ना मावत, बिष्टा अस्त क्रिम उदर परयो है। दै दिस्ताए महाबिख्या को, पर तन छीन अज्ञान हरयो है। जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो, जम दूतन डन मृत मरयो है। अनक जोन संकट नरक पुंचत, सासन दुख गल

0: नानक रोग दोख अगमो छिदै हर नाम खग।
1: वाहिगुरु जी उदम कर लागे बो पाती बिचरे अनक शास्त्र बो खटुआ पसम लगाए तीरथ बो प्रमते सूखम दे बंदे बो जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत थाटे कर थटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम

जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चट्टी है तुद दि

0: के कर्मंकरी में
1: के सर्वंकरी है के सर्वंदरी है
0: के सर्वत्र मान है के सर्वत्र जाने है
1: के सर्वत्र कौन है के सर्वत्र कौन है
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश
1: है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे
0: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है
1: के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाओ
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश

के साहिब दिमाग हैं के हुस्नल चराग हैं के रोजी दहिंद हैं के राजक रहिंद हैं गनी मुल्क राज हैं गरनी गरीब उल निवाज हैं कलंकन प्रणास समस्तुल निवास।

0: स्वनबर है,
1: सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है,
0: ब्रह्मंडस है, खलखंडस है,
1: परते पर है, कणाकर है,
0: अजपा जप है, थपा थप है, अमृतामृत है, करणाकृत है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है, अजबाकृत है, अमृतामृत
1: है,
0: विश्वंबर है, करणालय
1: है,
0: पव पंजन है, अर्गंजन है, अकलन कृत है, सर्वाकृत
1: है,
0: परमात्म है, सर्वात्म है, भुजंग पर्यात छंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्र,
1: नमो राज राज, नमो इंद्र इंद्र,
0: नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे,
1: नमो बिंद्र बिंद्र, नमो बीज बीजे,
0: नमो राज संग ताम संग सात रूपे।

0: नमो
1: इंद्रियनाथं भगुते
0: कलंकार रूपे अलंकार अलंके
1: नमो आसे आसे नमो बांक बंके
0: अपंगी स्वरूपे अनंगी अकामे
1: तिरंगी तिरकाले अनंगी अकामे
0: एक अक्षरी छंद अजय अलय अभय अभय।

0: प्रसन्न सत्रीपद अंत फसे जम फास पड़ेंगे।
1: जे नर श्रीपद के प्रथम पग ते नर फेर न देह तरेंगे।
0: कहां पे हो जो दो लोचन मुंद के बैठ रहे हो भक्तान लगायो।
1: ना फिरो लिए सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो।
0: मास कियो भिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो।
1: सात को सुन लियो सबे जन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो।
0: काहुले पाहन पूछत रहे हो सिर काहुले लिंगरे लटकायो।
1: काहु लिखे रवाची दिशा में काहु पिछा को सी सुनवायो।

0: मन अनुमानत माँ भूत कछ पे ना जानत
1: महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिंतने पिव
0: आप अपनी बुध है जीती वर्णत पिन पिन तो तेती
1: तुम्हा लखाना जाए पसारा के भी सजा प्रथम संसारा
0: एक रूप अनूप स्वरूप पारंग पे और राह गई फूपा
1: अंड जे देर जिस तेज कीनी उत्पुज कान बो रच दीनी
0: को फूल राजा हुए बैठा को सिमट पे संकेर गैठा
1: सगरी श्री सृष्ट गाये चंप वो आज गास रूप से
0: अवरत सामेरी तुम करो सिखो बाण सिख संगरो
1: दूसरे जीते उर्वत पाता सकल मलेश करो रनकाता
0: जय सुच तब सरनी परे तिनके दुष्ट के तुम मरे
1: पुरक जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सप्तारे
0: जो कल कोई एक बार त्याये ताके काल निकट निया है
1: रचा होए ताए सब काला दूसरे अर्श ठरे तत्काला
0: कृपा दिस्तन जाय न हरो ताके ताप तुनुक मोरे
1: रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शासन सके ना कोई
0: एक बार जंत में सबारा काल फास्ते ता उबारा
1: जिन्ने नाम तियारी कहा दारिद दुस दोख ते रहा
0: करे केत में सर तियारी आप आदे ले उबारी
1: सर्बटोर मोहो सहाय दुस दोख ते लियो बचाई
0: कृपा करियम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता
1: फिर भिक सकल देखो हरता दुस दोखिन को शय करता
0: श्री जुच्चा पे दयाला पूरन करा ग्रंथ काला
1: मन बाचित फल।

0: अगली मेलती जानंद कुं का सतगुरु प्रसाद अनंत पिया में माई सतगुरु में पाया
1: सतगुरु ता पाया सह सिति मन जिया वदाया
0: वचन बाबा परिया शब्द गाविनाया
1: शब्द ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया
0: नानक नंद हो सतगुरु में पाया
1: ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले
0: हो तुम मन मेरे दुख सब साना
1: अंगीकारो करे तेरा कार सब सवाना
0: सुना कला स्वामी स्वामी सुख

जियो तू चलाए तिव चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा।

0: माता के उदर मह प्रित पाल करे सो क्यों मनो विसारी है।
1: मनो क्यों विसारी है ए वरदाता जे अगन में हार पोचावे।
0: उसनो कहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे।
1: अपनी लिव वापे लाए गुरमुख सदा संभालिए।
0: नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारी है।
1: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया।
0: अगन सब एको जेही करता खेल रचाया।
1: जात स्पाणाता जन्मया परवार भला पाया।
0: छुड़की लगी तृष्णा माया अमर बरताया।
1: हे माया जिथर विसरे मोप जय पौ दूजा लाया।
0: नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचै माया पाया।
1: हर आप मुलक है मुल ना पाया जाए।
0: मुल ना पाया जाए किसे विटो रह लोक बिल लाए।
1: ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनु सिर सोपिए विचो आप जाए।
0: जिसका जियो तिस मिल रह हर वसै मन आए।
1: हर आप मुलक है पाक तिना के नानका जिन हर पल पाए।
2: रास मेरी मन वर जा रहा हर रास मेरी मन वर जा रहा सतगुरु ते रास जानी।
3: हर हर नित जपियो जियो लाहा खट्यो देहाड़ी।
2: एहो तन तिन्ना मिलिया जिन्हर आपे पाणा।
3: कहे नानक है रास मेरी मन होआ वंजारा।
2: ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए।
3: प्यास न जाए होरत किते जिचर हर रस पले न पाए।
2: हर रस पाए पले पिए हर रस भो न तृष्णा लागे।
3: एहो हर रस कन्नी पाईए सतगुरु मिले जिसे।

0: पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया।
1: प्रसादी बुझियाता चल थोआ चलत नदरी आया।
0: कहे नानक सृष्टि का मूल रचया ज्योत राखी तातु जग में आया।
1: चाव पे आप प्रभागम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया।
0: गाओ मंगल नित सखिए शोक दुख न व्यापे।
1: चरण लागे दिन सभागे अपना पिर जापे।
0: अनंत वाणी गुरु शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो।
1: कहे नानक प्रभु आप मिलिया करण कारण जो को।
0: ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया।
1: कर्म कमाया तुझ शरीरा जातु जग में आया।
0: जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया।
1: प्रसादी हर मन वस्या पूरब लिखिया पाया।
0: कहे नानक एओ शरीर परवान होआ जिन सतगुरु से चित लाया।
1: नेत्रो मेरे हर तुम में ज्योत दरी हर बिन अवर न देखो कोई।
0: हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया।
1: संसार तुम देखते हो हर का रूप है हर रूप नदरी आया।
0: गुरु प्रसादी दूजे आजा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई।
1: रहे नानक के नेत्र अंध से सदगुर मिले दिव दृष्ट होए।
0: ए सुनो मेरे ओ साचे सुनने नु पठाए।
1: साचे सुनने नु पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी।
2: जे सुन तन हरिया हो रसना रस माणी।
1: चलक पिडारी ताकि गत कही न जाए।
0: कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचे सुनने नु पठाए।
1: जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया।
0: बजाया वाजा पौन नो द्वारे प्रकट किए दसवा गुप्त रखाया।
1: द्वारे लाई पावनी इकना दसवा द्वार दिखाया।
0: ते अनेक रूप नौ नव दिसता अंत न जाई पाया।
1: कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया।
0: यो साचा सोहेला साचे कर गावो।
1: गावो ता सोहेला घर साचे जिथे सदा सच त्यावे।
0: सचो त्यावे जात पावे।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए घर नौने दया वै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देखें रिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंध बंध कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवे जहां।

तीर्थ कोट किए स्नान, दिए बहुदान महाम्रत तारे, तीर्थ कोट किए स्नान, दिए बहुदान महाम्रत तारे, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो हो रखनहार दयाला, नानक करके गुले। हों आया दूर हूँ चल के, मैं तकी तो सरनाए जिया, मैं असर की चित में मेरा सब दुख

गिरवड़पुर ताल बाजार ही बाजार में आए कडे बाजार का मेरा जी रानिया बोले आल पताल लखटकियां के मुंदड़े लखटकियां के हार जितन पाइए नानका सेतन हो वैचार ज्ञान गली ढूंढिए कथना करडा सार कर मिले तब पाइए और

प्राण लख सुरतन सुग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लग गया ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखे आवण जान नानक मति मिथिया कर्म सचानी शान पढ़ सचा सह बेगु जिन सचो सच उरता जिस देत सुमिले सच ताजनी सच कमाए।